0: নিউলেমুং ওকে মন্দা সফা তাকে
1: দুনিয়ে দেখে ফাওয়া পড়েতি পার তাকে
0: ইনসাফকে তারা দম মলি উম্মেদ বদল করলে শখসিয়াতুম
1: রেগনুগে হামহিমে কামুগা রাইয়েতুঙ্গে হাল বেল্লোমা নুকুমে মডাঙ্গুল বি কোম্বে ফ্লেতো
0: রোমিনা ফারসিঙ্গে বড়তে রাসকান্তা কুডকা কুজেসফি কন্দিডারেতো
1: এই হামহিকনি তারিখ বিবাহক তাকিনো
0: এই দুনিয়াকে চাট বদল করলে হাকিকে হাতিসাতকে
1: এ হাতিসাতকা এ বাহক তবনি নীল কোরগা সেরিং ফেশিগে আন্দালুসকে পর্বতকা হামিয়া পেতুরিফা কুরি পোশি কমমে হোম দুহে কেহেন্দনু আগগড় তিরিহু
0: রিপিট অঙ্গার দহগে বেন্দরু একে জহায়রু
1: আদি হোনি দহগে রোসি হাগড় তিরিহু
0: এঙ্গা সতর স্টেক সালিস নে কিলোহার্টস মিডিয়াম ওয়েভ আদি আড্ডি হেনে মেগাহার্টস এফএম ব্যান্ড
2: ದುಳಹಯ ದಿರಿಯುಳುಮಕ ದೊರುಹುಳುವಾದದೆ ಎಮ್ಮೆ ಮುಜರ್ರಿಬ್ ತಳು ನಡೆಯಕಿ ದುಳಹಯ ಸಿಹದು
3: ದುಳಹಯ ಸಿಹದಕ ಮಗು ಫಹಿಕೊದ್ದೆ ಎಮ್ಮೆ ಕಶವರು ಮಸ್ತರಕಿ ಡಾಕ್ಟರುಂಗೆ ಇರುಷಾದ್
4: ಲೇಮಚ್ಚದ್ದ ಎಮ್ಮೆನ್ನಕಿ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಗೆ ಸಬೂನ್ ಲೇಮಚ್ಚದ್ದ ಮೀ ಹುನೆನ್ನು ಎಮ್ಮೆ ಲೇಮಚ್ಚದ್ದ ಮಗು ಫಹಿ ಕೊಡುವ ತಫಾತು ಕಂತತ್ತವಗೆ
5: মিহার ফিতি ফাইম বারে বাদান মিসাল কা ডিস্কিং ইচ বার পোডন না আর ফিতি কোরে জা উম
6: হিতকে মাসলা দিমাওয়ানে মিহার একি মিহন দিমাওয়ানে একি কই গোতা
2: ডক্টর উঙ্গির শাদায়ক দুলাহি উদিরিউল মে বাট্টান কুরমা মগুফাই কুদ্দেনি
3: কমে হুকুর দোহে গেরে নোয়ে জাহায়র স্টুডিও ইম ওয়াগুতু
2: এং হাসা তরস থেকে 49 কিলোহার্টজ মিডিয়াম ওয়েভ আড্ডি 90 মেগাহার্টজ এফএম ব্যান্ড
3: দিবেহ রাজ্যে গাডু
7: দুলহে কুলিবারে লোপ কুরাবা ফরাতক খাসক দিবেহ রাজ্যে গাডুন গেনস্তেনি
3: ಹಫ್ತಾಗೆ ಎಮ್ಮೆ ಪಾಹಗ ಕೊಲ್ಲವೆ ಕುಳಿವರ ಖಬರ್ ತಕ ರಾಜ್ಯಗೆ ಎಕೆ ಕಂಕುಳಿತವ್ಗೆ ದಂಡತ ಕುಂಫೆನಿನು ಹೀನು ಕುರಾಫದ ಹ್ಯಾರಾಂಗ್ ಕುಳುವಣಿವೆ ನತೀಜಾ ತಕ ಬೇರು ದುನಿಯೆಗೆ ಕುಳಿವರ ಖಬರ್ ತ ತಾಜಾ ಕಮ
7: ಜುವಾಂಗ್ ಎಥ್ಲೀಟುಂಗೆ ಉಮ್ಮೀದಿ ದತುರಾ ಕಾಮ್ಯಾಬಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಸಿವೃತ
3: ಕುರಿಯ ರೇಫಾವಾ ಫೋರಿಗದ ಮುಬಾರತಕ ಎಮ್ಮೆ ಅವಹ ಫೆನ್ನಾಣಿ ಮೆಚ್ಚುತ್ತವುಗೆ ಎಮ್ಮೆ ಫಹುಗೆ ತಯಾರಿತ
7: ಆದಿತ್ಯ ದೋಹುಗೆ ಹೆಂದನು ಅಕ್ಕಡ್ತಿರಿ ಹುಂ
3: ರಿಪೀಟ್ ಹೋಮ ದೋಹುಗೆ ಮೆಂದುರು ಎಕ್ಕೆಚ್ಚ
7: ಎಂಹಾ ಸತರಸ್ತೇಕ ಸಾಡಿಸ್ ನೂಯ ಕಿಲೋಹರ್ಟ್ಸ್ ಮೀಡಿಯಂ ವೇವ್
3: ಅಡ್ಡಿಯ ನೂಯ ಮೆಗಹರ್ಟ್ಸ್ ಎಫ್ಎಂ ಬ್ಯಾಂಡ್
7: ದಿವೆಹಿರಾಜ್ಯಗೆ ಅಡಿಯ
0: ದಿವೆ ಬಹುಗೆ ಫುಂಗ್ ಆಯುಧ ಶೋಗರುವ ಫರಾತನ ಖಾಸಕ ದಿವೆ ರಾಜಾ ಡುಂಗಿಡಿಸ್ತೀನಿ
8: ಬಸ್ವಾರ್

0: Mamma, baluwa wajja.
1: Tarifla, soni agak tu bunyi. Mamma ibu cie mikir mulu bang.
0: Papa, gadi cie hani ye.
2: Tarifla, madu kau bala.
3: Sonia, debel masa sekolah na.
4: Tumhi ni tu kaha tha. कि सच्चा प्यार सबसे बड़ा होता
0: मामा
4: किस्मत से भी
5: मामा फोन है का हाँ माधवार यह तैयार दावी था ना कड़ीवाई पर कुराना
0: मामा वैस फोन का डोंडा
6: कोको डोंटे कमी कड़ी गाले नूले वेने दे सोनिया गाता
7: एहेन हिं गुलुंता बदहे कुराफदान एम गातुगावा गुलुंतका एम फुरतम इस्कंदेमा

0: हंगार अंगार दो मिंदुल कोरी इकार गड़ फना रहे रिपीट एरे दिया गड़ तेरी हूँ आदि बुद्ध दो होकेरे मिंदमो बार गड़ तेरी हूँ
1: हंगार
2: हम एकनी दिवे ही राज्य क्या डूं
3: कोम्मे उमुरका
4: कोम्मे फांतियका
3: कोम्मे गिंतियका दिवे ही राज्य के अड़ू इंहा सतरसे के साल इसनुए किलोहर्ट्स मीडियम वेव
4: अड्डी हनुए मेगाहर्ट्स एफएम बैंड
5: मिहारु गडिंग रेगंडो अगड़ 30 मिनट अड्डो समते गेंदवणी माफ करवा मिहारु गडिंग रेगंडो दिहगड़ 30 मिनट तिवे फळंग अड्डो समते गेंदवणी दिवे राज्य गेडो
0: मी फणरार मते गुमरु फ्रय खास कुरेफावा प्रोग्राम मे प्रोग्राम गा फणरार दशके कुडको दिन अन्नो गळे अडा वाहक हरुम एकशे गेंबे
6: दुनिया अस्सलाम वालेकुम फिल्म तक सीरीज तक अति मुनिफोई फिल्म दिन के दायरा शाकुर वडा नवा इमे हा बेफळोना उफा बेट वगत कोलकन एदे फिल्म दुनिया गति बेफळोना वगत कोलन हेद कोला मिहफ तक विस्मि बदल करनी अलगन अजीजा फारूक तफा चोनरा तोगे तफा तरिंगे फिल्म तक सीरीज त तिबे फळोना मरहबा के मवन तैयार वेफ एफद फिल्म तक सीरीज तक मिहफ तक विस अलगन पालालाना कोरियन मे बैगडीर अलगन आयक फिल्म दुनिया ग हेद कोलावा मी हफ्ता के प्रोग्राम में स्वशानी वारंग हिग्गेम रीति लवाए कुं

0: हंगार
1: अंगार दो मेंदुल कोरी इकार गड़ फणा रहे रिपीट एरे दियगट तिरी हूं आदि बुद्ध दो केरे मेंदम पार गड़ तिरी हूं
0: हंगार
2: हमें कनी दिवे राज्य क्या डूं